सुबह मंदारम रात्रि अक्तरंगा मटे पेनुने नए वेने काउरात नुबे में मिसा मटे अहुने नए वेने कठांडाक नुबे में हांडे मिसा मटे दानुने नए वेने स्पार्श्यक नुबे सुयमाले दयात तले पाहस मिसा मटे लबुने नए वेने सेने हसाक नुबे पिवित्र प्रेम है महर इतिन ओ इतिन नुबे तरं दानुने के नेक लोको हेद तावा कैसे वेन वे इन्न दिनुबे मैं देना हूँ हर अलाउ इन्ना दे